जिन्नी तुदनू तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्होंने गुरु नु तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शां प्राप्त करन वाले सर्वत माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

जब तू निर्मल ये सब तू निर्मलता जिस वेले तू हरि दा नाम जपेगा तेरा मन निर्मल होगा, मन निर्मल होएगा फिर तेरे कर्म भी निर्मल होंगे। निर्मल कर्म करने वाला सदा सुखी है, पाप करने वाला दुखी है। पापी कर्म कमांदे कर दे आए, इस वास्ते सिमरन कर। जी मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। बाबा जी वचन करते सन मन ना लगे।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चिया पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल दा समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रहा, और गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असि तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उलटाई है तां ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चा नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असि तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा

ये सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाय होएगा। फिर लोग सुखिए परलोक सुहेले, नान खार प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

संगत करन दा सरल है। ये तीसरा निर्धन नू पालना सी, किसे दा हक ना मारना, माया दा भी सेवा दा भी। मैनू याद है मैं शहीदां दे जोड़ियां दी सेवा करी दी सी, ते कई सज्जन नहीं सी रानू संगत कदी नहीं आए। हुण जोड़ा रखण वाला एक हुंदा सी ते लैण वाले दस हुंदे सी। तो जिन्हें जोड़ा फड़िया उन्हें फटाफट खाने च रख आना, ते फिर जिन्हें जोड़ा लैणा भावे उहदे कोल ना खलोते होना, परे खलोते होना, पर सब नूं पासे करके ना फिर जोड़ा। यह भी सेवा का हक होना, ध्यान देना। ये छे सत बाकी ना सेवा कर लैण, मैं कर लां अपने वालों। तो कहिंदा मैं सेवा कर रहा ज्यादा इन्हां नालों, तो दूजियां दा हक हो रहा। रुमाल लैके अंदर जिहड़े खाने च पए ने झाड़ भी सकदा, बुरश लिया के वह भी सेवा कर सकता, या तू रखिया हुण बाकी छे उन्हां नूं लैण, फिर तेरी बारी। किसे दा सेवा दा हक भी नहीं सिख ने खोना, धर्म दा हक भी नहीं, माया दा भी नहीं। ते अज जिहड़ा चौथा निर्धन नूं पालना है, इहदे च कोई माया नहीं कढ़नी पैंदी। मैं कहना कोई समा भी नहीं इन्हां देना पैंदा, मैं कहना कोई शरीर दा जोर भी नहीं लगदा, धन भी नहीं कढ़ना पैंदा। आओ ये चौथा निर्धन नूं पालना, अज बाबा जी सेवा लैण। तीसरा वाहिगुरु, चौथा निर्धन नूं पालना गुरु प्यारिओ रसना नाल, कोई माया नहीं लगदी। तुसी भी खालसे दी लाइन च शामिल हो सकदे हो। एक रसना ते कंट्रोल करके रसना नाल मिठा बोल बोल के, ये भी निर्धन नूं पालना। अपने हिंदुस्तान च एक संस्था है, अगे बचन सुनिया होगा तुसीं, उहदा नां है हैल्प इज इंडिया। वह केवल जिन्हें हिंदुस्तान च बिरध घर बने ने ना उन्हां नूं मदद देंदी। बाहरले देशों तक इन्हां दा संपर्क फैलिया होया, इन्हां दा विजिटिंग कार्ड है ना, उहदे ते लोगो भी जिहड़ा ना बजुर्ग ने सोटी फड़ी है, गोल कतारे च इन्हां दा लोगो निशान है। एक बारी इन्हां नाल दास दी मीटिंग हुई, ये आप बिरध घर चलांदे नहीं, बिरध घर जो चलाण उन्हां नूं मदद दिंदे। तरन तारण विच भी जिहड़ा बणिया ना भाई वीर सिंह बिरध घर, उत्थे भी एक पोर्शन इन्हां वल्लों बनाया गया, अंदर नाम भी लिखिया। इन्हां नाल एक वारी मीटिंग हुई ते कुछ लफज मैनूं बड़े अज तक याद ने, अगे सुने भी ने, तुसी कुछ नवे बैठे होंगे। कहिंदे 9 करोड़ बजुर्ग ने हिंदुस्तान विच जिन्हां दे बच्चे उन्हां नूं पुछदे नहीं, ध्यान रहे। कहिंदे साडी संस्था ने इक्को मिशन चुनिया। मैं कहना बलिहार जाइए इहो जिहियां सोचां तों, कोई चंगे बन्ने दा मिशन चुनना, फिर उहदियां बरीकियां च जाण। अपनी सभा की भी अरदास करो, तुसी भी कमिशन चुनिया विधवा बीबिया का, इत्थे भी चल रहा 700 परिवार है।

गुरु अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसी दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसी दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे।

अजर गुरु नानक साहब महल दरगाह में जुड़ बैठी सात संगत गुरु रामदास पातशाह अपनी बाणी विच फरमाउंदे ने जिन्ना चिर मेरे ते गुरु नानक साहब की कृपा नहीं हुई जिन्ना चिर मेनू गुरु नानक साहब नहीं मिले मेरे ते साहब नहीं तुठे मेरी की अवस्था सी जी। हजूर कहिंदे ने कौन सतगुरु

परम सत्कार्यो सत् संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत ध्यान संकोच के श्रद्धा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल का पंजवा समाप्ति का दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के श्रद्धा भावना नाल जेड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजिर नाजिर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी कृपा होवे उदों सतगुर पातशाह जी कृपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नू मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकदा पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारे हो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारे हो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया खुश। झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी। ये मजबूरी है मनुख दी समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे वो कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उनू बोलने दी लोड़े नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नू देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उनू बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिनू दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उनू कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने दी लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

आज पूर्णमासी दा ए समाते पूर्णमासी भी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिता जी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे निरंकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दी पुब्बा निकली, कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुख गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नू की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नू मुखातब होके कहंदा की

अरदास सारी रात अरदास की थी। अमृत वेड़ा हो गया, बेबे ने सोचे कारू च दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन स्नान किया, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढ़े। बेबे ने अपने सुंदर हाथे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मूंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खण चुके मूंह च पा लैंदा। अज वी ओही भैण वीर आए मक्खण तू खा, मक्खण तू खा। तली उत्ते मक्खण पिया है, बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड्या पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचिव पातशाह अमृत वेले कीर्तने जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहने लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दियां आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह? हजूर कहने लगे हां मरदाने तारां भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परोके रखदे सन, पुराना फैशन।

मूलधार बारिश शुरू होगी। बाबा जी ब्राज लगा के अड़ोल बैठे हैं, आसे पासे पानी पानी हो गया, पर संगत भी जुड़ी है। तो राय बहादुर नारायण सिंह जी राधा स्वामी ख्याल दे सन, कौन बैठे सन बाबा जी दे संगी सरदार हरचंद सिंह जी कमिश्नर साहब। राय बहादुर नारायण सिंह ने कहा हरचंद सिंह ए रब बैठा है, आखो श्री वाहिगुरु ए रब बैठा है, रब बैठा है। क्यों? जेड़ा रब दी रजा विच आ गया और रब है, आखो श्री वाहिगुरु ए रब बैठा। प्यारी सास संगत, बारिश होई, खड़ो गई, समय सिर कीर्तन दी समाप्ति हुई, बाबा जी दे ले उठे सारे बस्तर पानी दे नाल चोभा चोभा अंदर चले गए। संगत अपने अपने घरां नूं बाबा जी ने बुलाया, हरचंद सिंह ने कमिश्नर साहब अंदर गए, बाबा जी नाले टहलदे नाले मुस्कुराते हैं, ते नाले कहा हरचंद सिंह जी पातशाह। बाबा जी कह लगे अज सौरे इंद्र ने अपना पूरा जोर लाया है भी इन्हां नूं गुरु नानक दे चरणां तों तोड़िए, आखो श्री वाहिगुरु। इंद्र ने अज पूरा जोर लगाया है, ते बाबा जी कहन लगे हरचंद सिंह जिन्हां दा मन गुरु नानक नाल जुड़ गया है ए इंद्र की कर सकदा है, आखो श्री वाहिगुरु। जिन्हां दा मन गुरु नानक नाल जुड़ गया इंद्र नहीं तोड़ सकता, तो सचमुच अज तुहाडा भी मन गुरु नानक नाल जुड़िया है, आखो श्री वाहिगुरु। जो इस रात दे समय बारिश हो रही है तो आप इथे आके जुड़े हो प्यारी साध संगत ते गुरु नानक दी याद विच, ते अज पूर्णमासी दा समागम, अज दर्शन कीते आ पूर्णमासी दा, नाम लैंदे आ मन नानक सर चला जांदा है, आखो श्री वाहिगुरु। अज जिथे बेंत संगतां जुड़ियां बेंत वड्डी पूर्णमासी है, बेंत संगतां दूरों दूरों दिल्ली देहरादून होर दूरों दूरों संगतां अमृतसर तों पहुंचियां, ते मेरे तन गुरु नानक दी याद जुड़ी है। तो आओ प्यारी साध संगत, दास उथे तो नहीं पहुंच सकता, उथों तो आ गया मालक दे हुक्म अनुसार, पर अज इत्थे दर्शन करके भी नानक साहब दे दर्शन हो गया, आखो श्री वाहिगुरु। तुसी सारे जुड़े हो, तन हो आप, पर ए तनता योग सानू किसने बनाया है, प्यार नाल आखो तन गुरु। जगत जलंधे नूं ठंड पाण वाले मेरे बाबे ने अज मेहर करके तुहानू भाई अपने चरणा नाल जुड़े हो, तुहाडा जुड़ना सफला, जितना समा जुड़े मुबारक है तुहाडा जुड़ना, पुन वध गए गुरु दियां मेहरां प्राप्त करके अपना जीवन सफला कीता है। तो आओ प्यारी साध संगत, हुण कीर्तन दी समाप्ति करदा हां। राय बुलार उत्ते गुरु तुठा है, दर्शन होए फिर प्यार चाके पढ़दा है कि हां क्या सलाही किरम जंत वड्डी तेरी वड्या, दाता भी वड्डा ओदियां वड्याईयां भी वड्डी। तो आओ प्यारी साध संगत, हन हन गुरु प्यारे सरदार करतार सिंह जी सर्वत परिवार जिन्हां नूं भाई बाबा जी महापुरुषां दी संगत होई ते मिलिया कि गुरु नानक दा प्यार, आखो श्री वाहे। ओ आप तुसी तक ही रहे गुरु नानक दी सेवा, गुरु नानक दा सत्कार ए महापुरुषां दी संगत है। जिथे गुरु दी सेवा है भाई उथे किसे चीज दी कमी, तो ए मेहर है गुरु दी। प्यारी साध संगत, किस तरह मन प्यारे जुड़े है और इथे कोई स्वार्थ नहीं है, निराल गुरु नानक दा प्यार, गुरु नानक नाल जुड़ना, आप जुड़े है ना, ते अज उन्हां दे उद्दम दे सदके आपां सारे जुड़े बैठे हैं, आखो श्री वाह। अरदास करिए दाता जी इसे तरह सदा वास्ते जुड़ो, सदा वास्ते जोड़ी रखो, फुल डाली नाल लगा सोना लगदा, कोला अग विच पिया होया चमकीला है एदे अंदर रोशनी है, पानी नदी विच ही निर्मल है, इसे तरह ए मन भाई गुरु नाल बाणी नाल सिमरन नाल महापुरुषां दे बचना नाल जुड़े निर्मल, आखो श्री वाह। जे जुड़े रहांगे
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਮਿਹਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸਿੰਘ ਵਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁੱਕ ਪੜ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ।